0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

तेरी जैसा झूड़ा और जूड़े से चोटी निकली, जूड़े से चोटी निकली। टोकरी भी अब फैशन बन गई, मर गए गंगा रामा। एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।

कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स हर चुंगी, अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स हर चुंगी, साड़ी पेटी कोट के ऊपर कब्जा कर गई लूंगी, अरे कब्जा कर गई लूंगी। तौबा तौबा आज की छोरी बन गई एक ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे, और डबल रोटी को टांगे ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा माँ, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

क्यों ठीक है जवाब तो दे। अरे मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने। सच है ना बोलती क्यों नहीं वो मैं जानू तू जाने। अरे दुनिया वाले क्या जाने ये तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।

आँख में हाथ रहे नील गगन तले आ झूम फिरा कहे आँख में हाथ रहे नील गगन तले आ

ये तो बता वो चुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता।

है अगर हम तो तुम्हें हम क्या है, मेरे होते हुए ये सांस है क्यों सर्द तेरा, ये जहां गर्द जवां मर्द है